इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्द
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: खामोशियाँ। जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम।
1: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
2: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
1: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
2: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
1: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
2: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,

0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
3: Chinar beats with Harshi Deva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

0: Zeus.
1: कौन आया?
2: फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चला 90.4 FM आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप व्हाट्सअप शो का हिस्सा बनने के लिए 8899904904 इज द नंबर। जी हाँ, नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है। याद रखिए, आपने फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना है रेडियो चनार के ऑफिशियल हैंडल्स का। फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर सर्च करें रेडियो चनार 90.4 FM हर दिल की धड़कन। कमेंट्स में प्यार जरूर दें। डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से। ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चना 90.4 FM सिटी हक्ट जगजीस के साथ धड़काते रहो।
3: I know when I find it, I'm looking for answers and the meaning behind it. I'm taking a chance here.

0: Asia Zeus. Kom nou ja.
1: Radio Chennai. Radio Radio Chennai. Weather update. Weather update.
2: Hottest frequency, hottest gidder ka namaskar show, what's up, Shayam, what's up, show me, brother, aaj ka weather.
1: Radio Chennai, radio, radio Chennai, weather update, weather update.
2: जी हाँ, वेदर अपडेट की अगर हम बात करें तो वेदर मैन की तरफ से प्रेडिक्शंस, जम्मू रीजन इफेक्ट होने वाली है, चिनाब वैली डिस्ट्रिक्ट्स जैसे उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ, इन पर होने वाली है रेनफॉल। साथ ही साथ बताया जाता है कश्मीर में, साउथ कश्मीर इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट इफेक्टेड, लाइट से हेवी रेनफॉल्स और मॉडरेट्स भी एक्सपीरियंस किए जाएंगे।
1: रेडियो चिना, रेडियो
2: रेडियो चिना। दोपहर तक ये जो मामला है संगीन रहने वाला है, दोपहर होते होते फिर रिलैक्सेशन नेचर की तरफ से मिल ही जाएगी। बात करें आज के हमारे वेदर ऐप की, तो वेदर ऐप हमें बता रहा है कि थोड़ी देर बाद बारिशें शुरू हो सकती है और दोपहर होते होते बारिशें थम जाएंगी और सूरज फायर बनकर फिर से चमकेगा।
1: रेडियो चिनार, रेडियो रेडियो चिनार, वेदर अपडेट, वेदर
2: अपडेट। यूवी इंडेक्स वीक पर अभी के लिए ह्यूमिडिटी 83%, विंड स्पीड 0 किलोमीटर्स, विजिबिलिटी 4 किलोमीटर्स। आज का सनराइज हुआ 5:37 पर, आज का सनसेट होगा 7:39 पर।
1: वेदर अपडेट
3: आवारा पर
2: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम, याद रखिए 8899 0090 नंबर इस तो दिन दिलान वार छे दिवान सानिन दिलान सहित। मैं हूं जॉक्सियस, ये है हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव, मेरे यार सिटे हक्ट धड़काते रहो।

0: देखी क्या मेरे को?
1: अरे नहीं देखा।
0: अरे बोल ना, मेरे को देखी कि नहीं?
1: हाँ मैंने तो देखा, पर उसने
0: ना कि उसने पलट। हाँ दिमाग में।

0: भाव, माल लोड हो गया है, चलें क्या?
1: तो
2: हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चना 90.4 FM।

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
2: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर जो वायरल होता है हम पहुंचाते हैं आप तक। वायरल ऑन व्हाट्सएप, आइए बात करते हैं एक ऐसी खातून की, एक ऐसी औरत की जिसने बबल टी और शुगरी ड्रिंक्स पीकर अपने लिए कर दी दिक्कत। अब अगर दिक्कत उन्हीं के लिए रहती तो भैया ठीक थी, लेकिन डॉक्टर्स के भी पसीने छुड़ा दिए क्योंकि इनकी किडनीज में तकरीबन 300 के करीब किडनी स्टोन्स पाए गए। रूड बॉय रसना था, इफ यू आर इमेजिनिंग दैट, ऐसा नहीं है बल्कि छोटी छोटी पत्रियां 300 के करीब डॉक्टर्स ने रिमूव की और वजह बबल टी और शुगरी ड्रिंक्स। अब जो लोग कार्बोनाइज वाटर वगैरह लेते हैं या शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं वो समझ सकते हैं कि क्या हाल हो सकता है। भैया वायरल था तो व्हाट्सएप पर आ चुका है। मैं हूं चौकसी, उसे है मजदार शो व्हाट्सएप से रिहक तिरकाते रहो।

0: आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम।
1: दीवानी सी एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे

मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: Over.
1: No! Please.

0: मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम मस्तार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, नाउ यू आर जस्ट अ स्ट्रेंजर विद ऑल माय सीक्रेट्स। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल सिडे हट धड़काते रहो।

करो अपने दिल की बात मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: करती है, वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with Harshit Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats ve Darce Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: ही हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Jeremy. Chinar Beats ve Darce Diva. Only on Radio Chinar 90.4 FM. 0.4 FM.
1: मैनू एक मोटरसाइकिल दिला दो ना।
2: कुछ और मंग लेना, मोटरसाइकिल ले।
3: दिला दीजिए ना।

आप सुन रहे रेडियो चुनाव 90.4 एफएम हरदल की धड़कन मस्तार शो व्हाट्सएप। मैं हूं जॉक्स और व्हाट्सएप शो में अगली पेशकश आई फील गुड अ शो डेडिकेटेड टू द लवर्स ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक। कुछ ही देर में हरदल की धड़कन को धड़काते रहे, स्टे हुक्ड टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो चुनार। सही है मेरे यार।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

Star Beats with Harshi Diva, only on Radio Channel 91.4 FM.

जिंदगी आंखों से तो नहीं कह सकती पर जुबानी में जता रही हूँ, बता रही हूँ आपके साथ बात करने मैं आ चुकी हूँ। जी हाँ, बस यही है कि दिलों को धड़काने और सांसों को बढ़ाने और इस फ्रीक्वेंसी को और भी हॉट बनाने में आ चुकी हूँ ऑन योर रेडियो चुनार 90.4 FM।

Svedhar Chetiba, only on Radio Channel 90.4 FM.

Sorry, me. बीट्स ऑन रिपीट शो चला रही सब एंजॉय कर रहे हैं रेडियो चला 90.4 एफएम पर ढेर सारी बातें मस्ती मजाक फन एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। आई तो सुपर डुपर एक्साइटेड क्योंकि देखिए शो की शुरुआत हो चुकी है और मैं हूँ आप है मौका है दस्तूर है कहाँ जाने का हजूर। अब ये ठंड आए हाय है मौसम दिन ब दिन इतना सख्त क्यों हो रहा है। बट ये भी बता दें कि अलार्मिंग सिचुएशन बोल रहे लोग, बट कुछ कुछ जगहों पे अभी अगर हम देखें कि नदी नाले जो है वो भर चुके हैं और उसके इर्द गिर्द लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू बी पैनिक। और हमें ये बताया जा रहा है कि फ्लड आने के चांसेस है। देखिए जहाँ जहाँ से है वहाँ वहाँ से लोग कंट्रोल करे हुए हैं उस जगह को और वो वहाँ पे संभाल रहे हैं। बट हमें घर बैठे पैनिक नहीं होना क्योंकि हमारे एरिया में हम सेफ है। बस उसके अलावा बस यही है कि सुबह आप जब निकलते हैं और ये मौसम हो ना सुबह सुबह वो ठंड हो और जून जुलाई का मौसम हो तो अलग ही वाइब आती है कि भैया ये तो लग नहीं रहा है जुलाई में, ये तो लग रहा है विंटर फिर से आ चुके हैं। सुबह जैकेट लगाना पड़ता हो, शाम को फिर से धूप बढ़ जाती है। अब ये हाइड एंड सीख है या मौसम का कोई स्तंभ ये तो हमें पता है और क्या है इसकी वजह वो आप भी मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और शो कैसा बन सकते हैं 80999।

0: 0494 पर आप कॉल टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो का ऐसा बन सकते हैं, बता सकते हैं क्या है हालात, जज्बात और आज आपके ख्याल
1: जाए।
0: देखिए, बातों का डर क्या है, हम तो बात करने के लिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी बातें सुनेगा कौन, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं सुनने वाली हूँ और साथ में आपको बैक टू बैक सॉन्ग्स सुनाने वाली हूँ।

0: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: देखिए बेख्याली में तो मुझे ख्याल भी ये होता है कि मुझे आपसे बात करनी है और उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। बस ये कमबख्त वक्त है, यानी कि घड़ी जब इशारा करती है कि आपने बात करनी है और मैं बहुत खुश होती हूँ। यार मैं बता नहीं सकती मैं कितना अच्छा फील करती हूँ एंड आई फील वेरी हैप्पी कि मुझे हर दिन मौका मिलता है कि मैं आपसे बात करती हूँ। आप अपनी सुनाते हैं, मैं आपको अपनी सुनाती हूँ। बट कुछ बातें ऐसी होती है ना जो चाहते हैं लोग सुनना, यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। Yes, I'm talking about National Highway of Jammu and Kashmir, and if I talk about National Highway, that's

completely closed from both the sides, both ends. यानी कि आज कोई भी गाड़ी जम्मू से श्रीनगर नहीं जा सकती है, आ सकती है. So be cautious, क्योंकि अगर हम देखें तो massive landslides, mudslides, shooting stones ने काफ़ी trigger किया है और रास्ता काफ़ी ख़राब है. हमने कुछ videos भी अभी surface हो रहे थे social media पे, अगर हमने देखा तो रास्ते की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है. Rainfall continue है, अभी भी अगर हम देखें बारिशों का सिलसिला जारी है. So उसके कारण जो है road की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है. अभी मेंटेनेंस हो रही है और कब ओपन होगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे जानकारी. बट जस्ट एक छोटा सा रिमाइंडर कि हम गाड़ी चलाते हैं सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, सबको पता है, बट वो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि जल्दबाजी में. देखिए वो हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, फिर हमें फ़ाइन बनना पड़ता है. हम नहीं चाहते कि आपको कोई नुकसान हो. सो वी केयर फॉर यू, वी मीन इट. एंड ज़रूरी अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान सोचे कि हाय ये क्या हो रहा है मेरे साथ. बट मैं सच में चाहती हूँ कि आपके साथ सब अच्छा अच्छा हो और आप जिंदगी में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़े, तरक्की करें और हीरो बने. जीरो नहीं.

अब वहाँ मैं, अभी तो आप और मैं एक साथ है, मेरी पूरी वाइबो ट्राइब यही है, हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चलाओ 90.4 एफएम पर। तो जल्दी से बताइए आपकी जज्बात, आपकी कोई मैसेज, मैं पहुँचाऊँगी वहाँ वहाँ तक जहाँ जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चुनार की आवाज़। आप सुन रहे हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो चुनार 90.4 एफएम।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक। रेडियो चुनार पर आप और हम हो रहे हैं फैसियाब, सुनकर हमद बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक। रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हम्द बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।
1: जुम्मतुल मुबारक। और ये खास दिन इतना खास क्यों होता है? ये रेडियो चिनार पर बराबर 12:30 से लेकर 2 बजे तक हम आपके लिए डिवोशनल म्यूज़िक चलाते हैं। जुम्मतुल मुबारक को आप डिवोशनल म्यूज़िक यानी कि नातिया कलाम, सूफ़ी कलाम, और ट्राई करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बात करें, आपसे वो कहते हैं ना कि सुने कि आप कितना रेडियो चिनार को मानते हैं, और जब आप दुआओं में हाथ उठाते तो कितना हमें याद करते, कि यूँ ही हम आपसी में एक साथ बात करें, काम आए। और जब मैं आपके साथ जुड़ती हूँ तो एक मकसद होता है कि आप और हम मिलके इस सोसाइटी को और भी बेटर बना सके। सो दुआ कीजिए अभी हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए। और फ़िलहाल के लिए मैं यही हूँ और टॉपिक रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी। और यहाँ पर ये नातिया कलाम आप सुन रहे हैं ऑन योर रेडियो चुनाव 90.4 FM। ये हर दिल की धड़कन।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नात रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

शो चुनाव बीट्स आप सुन रहे ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM पे सारी बातें हो रही है एंड आज जुम्मत मुबारक है और इस खास मौके पर हम आपके लिए डिवोशनल म्यूज़िक चलाते हैं, नातिय कलाम, सूफी कलाम हम आपके लिए पेश करते हैं। हम ट्राई करते हैं कि आप इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अपना तवज्जो इबादत की ओर दे, हमें दुआओं में याद रखें, यूँ ही हमारा साथ बना रहे। एंड स्पेशली आज शो पे बात हो रही है डिजिटल एस्थेटिक के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा भी ट्रेंड चेंज हो चुका है हर एक ही लाइफ में, यानी कि सब कुछ एस्थेटिक, चाहे कैफ़े हो घर में, हमारा जो पूरा एम्बियंस होता है या कहीं भी आप जाए तो एस्थेटिक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। या डिजिटली भी हम काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक के साथ जुड़ चुके हैं, हमारा तालमेल काफ़ी बढ़ चुका है। आज जुम्मत मुबारक है और खास मौके पर हम ट्राई करते हैं कि आपके लिए डिवोशनल म्यूजिक चलाए बराबर 2 बजे तक। और आज जुम्मत मुबारक में हमें दुआ में याद रखिए। आप सुन रहे हैं रेडियो चुनाव 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हमद बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हमद बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जी हाँ, शो चुनार बीच में आज हमने बात की डिजिटल एस्थेटिक्स के बारे में, एंड शो भी ख़त्म हो चुका है। शो म्यूज़िक ऑन डिमांड में अपना पसंदीदा नात सुन सकते हैं, नात कलाम, सूफी कलाम सुन सकते हैं। 8899904904 पर आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं। आज जुमतुल मुबारक है, तो आज बराबर 1:30 से लेकर 2 बजे तक आप डिवोशनल म्यूज़िक यानी कि अपना पसंदीदा नात कलाम, सूफी कलाम सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो चुनाव 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हमद बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैसियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हमदे बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: देखिए उस दर पर तो दीवाना आ चुका है, पर इस दर पर आ चुकी है आरजे अस्ट्रा और लेके शो हंगामा, जहां ड्रामा, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और क्या बजिंग है, इसके अलावा लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच सामने आता है जो कहीं और बात नहीं होती है। अब देखिए अभी शो शुरू हुआ है, बराबर 4 तक चलेगा एंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट। ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट द अपडेट्स, वी टॉक अबाउट क्या ट्रेंडिंग है, आज का क्या टॉपिक है, और एक सेगमेंट जिसे हम कहते हैं गेम ऑन, जहां हम बात करते हैं बहुत सी चीज़ों के बारे में रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। एंड मोर ओवर अभी शो शुरू हुआ है और आते आते कुछ अच्छा प्ले होता है, और आज जुमतुल मुबारक है, तो सम ऑफ द ट्रैक्स दैट आर रियली नाइस एंड रियली सूदिंग टू लिसन,
1: जहाँ पे कहोगे
0: एंजॉय कीजिए ये ट्रैक। मैं हूँ असरा, मैं बस यूं का यूट्यूब वापस आई, और सुनते रहिए रेडियो सुनार द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 FM।

0: डीजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। अब देखिए, अभी अभी कुछ देर पहले शो शुरू हुआ है और हम पहले बात करते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जो एक्चुअली लोग देखना पसंद कर रहे हैं, रीपोस्ट कर रहे हैं, या कोई ऐसे ट्रैक्स होते हैं या मीम्स होते हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। अब देखिए, सोशल मीडिया है ही ऐसी जगह जहाँ पे कुछ भी कभी भी ट्रेंड कर सकता है, कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ जो बहुत पुरानी हो या नई हो या उतनी कुछ खास ना हो, बट इट्स जस्ट अबाउट द पीपल, व्हाट पीपल प्रमोट एंड व्हाट पीपल लाइक टू वॉच। और आज का है एक रिमिक्स जो कि एक्चुअली जो ओरिजिनल ओजी ट्रैक है, दैट इज़ बाय नुसरत फ़तेह अली खान साहब। एंड अभी एक जो वो ईडीएम मिक्स ट्रैक बना है, यानी कि वो जो क्लब इलेक्ट्रॉनिक मिक्स म्यूज़िक होता है उसे मिक्स करके एक इस ट्रैक का एक डिफरेंट रिमिक्स सामने आया है जो एक्चुअली लाइक एक साल पुराना है। और इस साल में लिटरली ये गाना 4 बार ट्रेंड कर चुका है एंड इट हैज़ गैदर्ड more than 10 million plus views on Instagram.

जी हाँ, मेरा पिया घर आया. दिस इज अ रिमिक्स बाय असद एंड लाइक पीपल आर लविंग इट, पीपल आर गिविंग इट सो मच लव. जैसे कि मैंने पहले बोला, ये चार बार एक साल में ट्रेंड हो चुका है, एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग. एंड एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो चला 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू.
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा.
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ.
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: वेलकम बैक टू शो हंगामा एंड टू द हॉरेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर। शो हंगामा और देखिए अपडेट्स भी जरूरी है। बैक टू बैक ट्रैक्स है यहाँ, इन्फॉर्मेशन है, एंटरटेनमेंट है, बट बैक टू बैक ट्रैक्स के साथ साथ अपडेट्स जो है, एंड स्पेशली इन शो हंगामा वी टॉक अबाउट रेलवे अपडेट, द कश्मीर रेलवे लिंक दैट इज बारामूला, बड़गाम, बानीहाल, संगलदन और अब कटरा जम्मू तक भी ट्रेन जाती है। सो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग राइट नाउ। और आज की अपडेट ये है कि पहले तो जो भी लोकल ट्रेन्स हैं, जो लिटरली जो बारामूला से संगलदन तक जाती हैं या बारामूला से बानीहाल तक जाती हैं, वो सारी ट्रेन्स जो है वो एज पर द समर टाइम टेबल शेड्यूल है, एंड यू कैन अवेल द टाइम टेबल इन पर्सन भी आप ऑफलाइन एट एनी ऑफ द स्टेशंस।

एट एनी ऑफ योर रिस्पेक्टिव स्टेशन जहाँ आप जाते हैं वहाँ पे आपको मिल सकता है. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट डिजिटलाइजेशन एंड उसका फ़ायदा यहाँ भी हमें मिलता है. दैट इज़ कि जो भी आपके रेलवे अपडेट्स हैं टाइम टेबल से लेकर द लाइव लोकेशन ऑफ द ट्रेन एंड मोर ओवर द ट्रेन बिटवीन स्टेशन, या आप अगर ट्रेन में अभी सफ़र कर रहे हैं तो आप अभी एग्जैक्टली कहाँ हैं, वो भी आपको रेल वन ऑफिशियल इंडियन रेलवे ऐप से पता चल सकता है. सिर्फ और सिर्फ कश्मीर रेलवे लिंक के बारे में नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडियन रेलवेज के बारे में हर कोई जानकारी आपको मिल सकती है. एंड मोर ओवर आप अपनी टिकट्स भी बुक कर सकते हैं प्रायर. अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, स्पेशली आउट ऑफ कश्मीर जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन बुक योर रेलवे टिकट्स ऑन रेल वन ऐप. उसके अलावा आज की अपडेट यही है. दिस वाज ऑल अबाउट द लोकल ट्रेन्स, बट देर इज़ समथिंग अबाउट वंदे भारत आल्सो. वंदे भारत कुछ इंजीनियर्स बाहर से मंगवाए गए थे जो एक्चुअली वंदे भारत को एक चेक कर रहे हैं, लाइक यू नो रूटीनली चेकअप्स होते हैं. वैसे भी रूटीनली चेकअप्स हर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो भी मैकेनिकल पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है, उसको चेक किया जाता है. बट एक हाई एंड हाई टेक इंजीनियर्स को मंगाया गया था जहाँ पे वंदे भारत को चेक किया गया जस्ट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर्स. मैं हूं अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM. एंड वापस आके बात करेंगे, लेकिन कुछ ट्रैक्स के बाद बात करेंगे 1 मिनट फैक्ट के बारे में. और आज का फैक्ट कुछ क्रेजी है. एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार. एंड भेजिए अपने विचार, विचारों से बढ़ता है प्यार, तभी तो हम है सही मेरे यार वाला रेडियो सुनार.

0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।
1: देखा है तुझको जब से, हाय मैं तो हिल गया।
0: देखिए, हमारा दिमाग हिल जाता है जब ये सोचते हैं कि वुमेन इंट्यूशंस कितनी स्ट्रांग होती हैं, और ऐसा क्यों होता है। सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल रीजन नहीं बल्कि साइंटिफिक रीजंस हैं, और जैसे कि अभी वक्त है 1 मिनट फैक्ट का, सो व्हाई नॉट वी टॉक अबाउट दैट।
1: मम्मी से क्या डैडी से भी मिला।
0: सो बेसिकली जो हमारे जो वुमेन ब्रेन होता है उसमें एक हिप्पोकैम्पस नाम का एक ऑर्गन होता है जो एक हार्मोनल रिलीज के लिए, इमोशंस, मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा लाइक रिस्पॉन्सिबल है। और उस चीज़ की वजह से क्या होता है कि वुमेन हैव द एबिलिटी कि वो लॉजिकल डेटा और इमोशनली जो भी डेटा होता है उसको साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर सकती है, और उस वजह से बहुत तेज़ी से और बहुत एक्यूरेट यूजुअली द इंट्यूटिव रिस्पॉन्स आते हैं, यानी कि उनकी जो गट फीलिंग होती है वो तेज़ होती है काफ़ी। कहते हैं ना, ये स्त्री है ये कुछ भी कर सकती है। एग्जैक्टली वही है कि इंट्यूशंस लड़कियों के इसलिए तेज़ होते हैं, गट फीलिंग इसलिए तेज़ होती है क्योंकि उनके एक्चुअली वो साइंटिफिकली दे आर प्रूवन टू हैव स्टफ लाइक दैट। मैं हूँ अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार, और कुछ ही ट्रैक से बात करेंगे कि आज का टॉपिक क्या है। मैं हूँ अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

जुम्मा तो है और साथ भी है और आज की बात भी है. और आज की बात ये है कि हम मनी हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं. इफ समबडी टर्न्स इनटू एन अडल्ट तो उनके मनी हैबिट्स क्या होने चाहिए. 50-20-30 रूल के बारे में हमने बात की और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में बात होगी. बट फिलहाल के लिए स्टे ट्यून्ड टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 FM क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: करो हंगामा आजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। And today we are talking about money habits, and let's talk about the famous rule of 50-30-20. That is 50% जो भी आपकी income होती है उसका 50% आप अपनी needs के लिए, अपने जो भी bills हैं या आप अपने life में जो कुछ भी एक negotiable नहीं होते यानी कि non-negotiables हैं उन पर खर्च कर सकते हैं। 30% जो आपकी salary का है that you should use for the wants, what you want to do. You want to go out, you want to have a, you know, date with your friends, with your partner, with yourself, उस चीज के लिए 30%। लेकिन जरूरी है कि बाकी का जो 20% जो बचता है दैट शुड बी यूज्ड फॉर सेविंग। और सेविंग का जो माइंडसेट है दैट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज कि आप कोई पैसा बचा रहे हैं, बल्कि इट इज़ मोर लाइक कि ऑटोमेटिकली अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में यू आर पेइंग योर सेल्फ, यू आर कीपिंग दैट मनी फॉर योर सेल्फ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब आपकी सैलरी आती है चाहे आप जितना भी बचा पाते हैं पहले ही वो सेविंग वाला पैसा आप अलग निकाल के रखें, ताकि आपकी जो फजूल खर्ची ना हो। एंड मोर ओवर जब से डिजिटलाइजेशन हुआ, UPI सिस्टम है, गूगल पे, देयर आर सो मेनी एप्स और सब कुछ डिजिटल है, सो वी कांट, वी हैव एक वो नोशन नहीं रहता, एक कॉशियस नहीं रहते हम कितना खर्च रहे हैं कितना नहीं खर्च रहे हैं। तो उस चीज़ पे बहुत ज़रूरी है कि आप, यू शुड ट्रैक योर स्पेंडिंग्स, यू शुड ट्रैक योर मनी, बिकॉज वेयर इज़ योर मनी गोइंग। अगर आप फजूल खर्ची करते हैं तो दैट इज़ योर on at the end of the day, because अगर आप पैसे बचा रहे हैं या सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज की वजह से कल को आप अपने लिए ही कुछ खास कर सकते हैं। अब इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की बात होगी, बट कुछ ही ट्रैक्स की बात। फिलहाल के लिए पैसा पैसा चालू है, और पैसा पैसा क्यों करते हैं, क्योंकि दुनिया पैसा पैसा करती है। अब हम पैसे को सही से खर्चना और उसे सेव करना नहीं सीखेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी।
3: अरे क्या बोल रहा है,
4: अब वही लोन ले लो बोल रहा है।
2: लोन्स के बारे में भी बात होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात होगी, जो भी आपके क्रेडिट्स हैं उसके बारे में बात होगी। सुन रही है रेडियो सुना 90.4 FM, ये है हर दिल की धड़कन।
4: लोन दे रहा है कोई,
3: अरे क्या बोल रहा है,
4: अब वही लोन ले लो बोल रहा है।
5: क्या बात है, क्या चीज है, पैसा, क्या बात है, क्या चीज है, पैसा, क्या बात है।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम। दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM.
1: वेलकम बैक टू शो. हंगामा शुरू हो चुका है गेम ऑन, जहां मिलता है आपको लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अपडेट. और सिर्फ अपडेट्स ही नहीं, बल्कि हम बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में या स्पोर्ट्स की दुनिया में सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है उसके बारे में भी बात होती है. और आज एक ऐसी ही रील जो अभी ट्रेंड कर रही है, वायरल हो रही है, फ्रॉम द ईयर 2024, हेंगसुई लेक मैराथन, जो कि 2 घंटे और 35 मिनट्स का रहा. बट एक्चुअली उसमें से सिर्फ एक क्लिप अभी वायरल हो रही है. दैट इज़ फ्रॉम द चाइनीज इलीट मैराथन रनर, जिनका नाम ली मेज़ान है. And what is special about the girl, the special speciality and something really special, something really encourages, aur aisi cheez jo log pehle to hairan ho gaye, uske baad unko sarahne lage, wo ye cheez hui ki she got her periods while running the marathon. Aur

उन्होंने वो रुकी नहीं, बल्कि जो भी 34 किलोमीटर का जो ये मैराथन था उसे कंप्लीट किया, एंड ये साबित किया कि लड़कियां डू इट रियली गुड, एंड ऑनेस्टली कुछ भी हो लड़कियां वो चीज़ कर सकती हैं, एंड इवन वर्ल्ड ब्लीडिंग.

एंड स्पेशली अगर इस इवेंट के बारे में बात करें, जो ये जो रील अभी हर जगह छाई हुई है, वो उसके बारे में बात करें, तो इसने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं दिखाया कि लड़कियां क्या कर सकती हैं, कितनी हिम्मत है, कितना करेज है, बल्कि ये भी दिखाया है कि एक जो शेम और स्टिग्मा है अराउंड हैविंग पीरियड्स और पीरियड्स के दौरान गेम्स खेलना, स्पोर्ट्स में लड़कियाँ इन्वॉल्व होती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, कुछ भी कर सकती हैं. इट्स जस्ट कि मेंटालिटी सोसाइटी की चेंज होनी चाहिए. और आप बताइए कि आपने ऐसी कहानी कभी सुनी है क्या? मैं हूँ अस्रा सुंदरी, रेडियो सुना 90.4 FM. अभी भी कुछ देर बाकी है और कुछ देर बाद आपका और मेरा साथ खत्म होगा. बट दिस इज योर टाइम, यू कैन कनेक्ट 8899-0404 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप. मैं हूँ अस्रा सुंदरी, रेडियो सुना 90.4 FM.

0: तेरे पुर्जे फट कर देगी डट कर देगी.
1: गेम इज ऑन. टून इन टू रेडियो चुनान 90.4 एफएम. गेम ऑन विद आरजे असरा ओनली ऑन रेडियो चुनान 90.4 एफएम.

है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल

मस्ती की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो।

0: इंसान। फैमिली एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

हाय मैं हूँ और आप सुन रहे थे रेडियो सुनार 90.4 एफएम पे शो हंगामा ड्रामा जो कुछ भी होता है यहाँ पर चार तक ही होता है, दो से चार शो हंगामा होता है। बट आज जा रही हूँ, कल वापस आऊंगी करने आप सबको एंटरटेन। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए और सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 एफएम। और आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड आउट।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी

असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्द
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन
2: धड़कन। गामच शिक्षत आवा का,
3: गामच शिक्षत आवा,
2: गामच शिक्षत आवा का, ये में बार गुल है सावा का, इस छकराई विजवावन,
3: इस छकराई विजवावन,
2: इस छकराई विजवावन, सुमरिन शोठन द्रावा का।
1: रेडियो चा 90.4 FM से मैं हूँ साहिल मुजफ्फर, और हज़्ब रिवायत आज एक और मेहमान हमारे स्टूडियो में तशरीफ आवर हो चुके हैं। कलमकार हैं, अपने दिल की बात अपने कलम की स्याही से किताबों में लिखते हैं और लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं। बहुत सारी किताबों की ट्रांसलेशन कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, और इनका एक नाम है, नॉर्थ कश्मीर के बारामूला एरिया से हैं, लेकिन अपने कलम की वजह से हजारों और लाखों लोगों के दिलों में छाप छोड़ चुके हैं। बात कर रहा हूं मैं, जी हाँ, जमा साल शायर, ट्रांसलेटर और एक बहुत ही खूबसूरत दिल के मालिक निसार आजम साहब का। निसार साहब, वेलकम टू रेडियो चिनार।
2: शुक्रिया साहिल मुजफ्फर साहब, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मधु किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपका और 90.4 FM का भी।
1: कहते हैं ना कि वो कलम का रिश्ता दिल के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा है, और कलम वही लोग उठाते हैं जिनके दिलों में जज्बात होते हैं, एहसास होते हैं। तुछ कृष्ण जबीन मज लखान, तुछ हिंदी मज ट्रांसलेशन करान, तो तुह उर्दू पे दस्तरस हासिल। अगर बह पन्न नाजरन तो वन वालन तान यहाँ वातना निसार सबन क्या कर शायरी, अत पत कन क्या वजह?
2: साहिल साहब, इत पा तुम वनानु प्रथ इंसानस मज जज्बात एहसास,
1: बिल्कुल
2: शायरस ये प्रथ इंसानस म इंसान छु तवे इंसान ये जज्बात एहसास, मगर यह शायर छु यह चैनलाइज हेकान कर
1: प्रॉपर वे,
2: बिल्कुल चैनलाइज करान तो पत वर्डन मज अल्फाजन मज सु शकल दिवान शायरी वनान।
1: बिल्कुल
2: शायद सपूद मे सी मे मज तो कुदरतन यह क्या तमत थोमुत सुजितिन जे मे मज तो यह हुनर यम मीन एहसास जज्बात यम गई चैनलाइज तो उम कर मे उम हिक मे कर व्यक्त पन्न अल्फाजन मज।
1: निसार साहब, वन शिवा, अगर हम किसी भी यू नो हसास सोसाइटी पे नज़र जब डालते हैं तो वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल क्लास होता है उसमें शायरों का भी नाम शामिल किया जाता है कि जो पोइट्स हैं, जो कलमकार हैं, जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ दैट इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ एनी सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि अभी एक इंटेलेक्चुअल के साथ हम बैठे हैं, और कुछ आज ऐसी बातें हम करेंगे जिससे हमें और हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को पता चलेगा कि आखिर युस जन ये कलमकार छो आसान, इम सिंदिस दिलस मज कुस नार छो आसान, युस पत कलम के जरिए लुकन तान वातान छो। अगर इस तंगे फनिश कथ करो, वारिया काल पट वोत मित वुछान वारियन मुशेरन मज तुई, अगर इस कशिर जबान हिंस कथ करो, उर्दू जबान हिंस कथ करो, खास कर कशिर कशिर जबान हिंस कथ करो, तह कत बासान इस कत एज कशुर पनुन पान वुछान छ।
2: हाँ, बड़े वैलिड सवाल छु साहिल साहब, ये वुछान छ जे कशुर कत छु, ये सवाल इस फिर ऐसे ब्रोट कुन इवान छु, इस सोन युस सोच सोन युस जहन यु छु एग्जैक्टली विंकनस युस अंद पे माहौल अत मज गसान

0: کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ خٲمی تہِ ٲسِتھ, بَٹ أسۍ چھِ کَران کوٗشِش زِ یُس اَسہِ اٮ۪نٹَرٹینمٮ۪نٛٹُک پَنُن اَکھ سُہ اَکھ پرٛوفایل چھُ آسان اٮ۪ف اٮ۪مَس, تَتھ سۭتۍ سۭتۍ گژھِ اَسہِ پنٛنہِ ماجہِ زٮ۪وِ لول بَرٕنۍ. تہٕ یِم اَسہِ پنٛنِس یَتھ سوسایٹی منٛز, سماجَس منٛز یِم اَسہِ رِیَل سٹارٕز چھِ, یِم اَسہِ قلمکار چھِ, یِم آرٹِسٹ چھِ, یِم اٮ۪چیٖوٲرٕز چھِ, یِم یَتھ سانہِ کٔشیٖرِ لول چھِ بَران, تِمَن کَرناوہو لُکَن سۭتۍ زان یِم نہٕ تِمَن زانہَن کِہیٖنۍ. بیٚیہِ چھُ بَس یِہوٚے کوٗشِش چھِ. تہٕ بَڑٕ خۄش گوٚو دِل آزٕ, تِکیٛازِ آزٕ کٔر واریاہ کٲلۍ بیٚیہِ کَتھ پنٛنِس اَدبَس مُتعلِق تہٕ بیٚیہِ تِمَن نِش یِم اَدب زانان چھِ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ نِثار اعظم صٲب برونٛٹھ کَنہِ آسَن, دِل چھُ وَنان بیٚیہِ بوزو کینٛہہ. تہٕ مےٚ باسان بہٕ کَرٕ نہٕ وۄنۍ کَتھ کینٛہہ, وۄنۍ بوزنٲیِو اَسہِ تُہۍ کینٛہہ تہٕ تٔتھۍ سۭتۍ کَرو أسۍ أزیُک پرٛوگرام کٕلوز.
1: ساحل صٲب, بہٕ وَنہٕ یہِ تۄہہِ, تُہُنٛد یُس آڈیَنٕس چھُ سُہ چھُنہٕ کٲشرُے یوت کینٛہہ.
0: بِلکُل, اَسہِ چھُ,
1: تۄہہِ چھُ وایڈَر آڈیَنٕس.
0: یَس,
1: یوٗ آر بیٖنٛگ ہٲڈ everywhere
0: across the world.
1: Across the world, and let me take this opportunity.
0: Yes, yes,
1: absolutely. Tohindiyam Hindi audience,
0: ha bilkul,
1: taman khatre,
0: yeah, why not.
1: Bapara kavita gore, kavita ka shirshak hai main kuch nahi. Kamre mein bikhre kuch kagaz, ek purana album, ek tala जिसकी चाबी यहीं कहीं गुम है. कमरे में बिखरे कुछ कागज, एक पुराना अल्बम, एक ताला जिसकी चाबी यहीं कहीं गुम है. मेज की अधखुली दराज से झांकते बेरंग लिफाफे, मेज की अधखुली दराज से झांकते बेरंग लिफाफे, लैपटॉप से आड़ी तिरछी चिपकी रंग बिरंगी पर्चियां, मग में सुस्ता रही ग्रीन की, ऐश्ट्रे में पड़े सिगरेट के टोटों की मरणोपरांत भूख हड़ताल, एक कोने में औंधा पड़ा दिन श्रृंगार करती हुई रात को देख रहा, कमरे के एकमात्र दर्पण को टकटकी बांधे तक रही क्रूर खामोशी, पर्दों पर रेंगती हुई गूंगी हंसी की मकड़ियां, गूंगी हंसी की मकड़ियां मस्तिष्क में सरपट दौड़ रही बेतरतीब ख्यालों की दूरगामी ट्रेन, खिड़की के कांच से झांक रही एक बांह और उसका प्रतिबिंब, सब कुछ सही क्रम में है, परंतु इस सार्थक प्रबंधन में एक ही अवगुण है, मैं, और मैं कुछ नहीं.
0: क्या बात है. بَڑٕ بَڑٕ
1: شُکریہ.
0: صوٗرت
1: شُکریہ. تہٕ اگر یہِ
0: بیٚیہِ گژھِ اَسہِ اَرپَن کینٛہہ تیٚلہِ
1: کینٛژاہ یہِ شبدو کے شور مےٚ سناٹا, کولا ہلکا اتھا سمُدر اُفان پر تھا, دوڑ رہے تھے پیچھے چیخو کے دانو, ارتھ شاستریوں کے سر نیزوں پر ٹانگے ہوئے, अर्थहीन शब्दों का एक विशाल समूह नाच रहा था, कदम कदम पर कटी हुई जीभें जबान, कटी हुई जीभें बिखरी हुई थी, अस्त हो चुके थे सार्थक शब्दों के भी तारे, सभी तारे, चहुं ओर से छाया था अंधकार भयंकर, कविताएं फिर मांग रही थी स्वतंत्रता, इसी दशा में तभी अचानक बुद्धिमता के दीप जल उठे दूर कहीं पहाड़ों में.
0: क्या बात
1: है, दूर कहीं पहाड़ों.
0: इट वॉज एब्सोल्युटली ट्रीट, एंड आई एम होपफुल कि आने वाले दिनों में यू नो लेट पीपल सिंक दिस एंड जो आज हमने बात की, एंड आफ्टर दैट विल अगेन सिट, बैठेंगे, बात करेंगे.
1: जरूर.
0: और हर एक इंसान की जिंदगी के बहुत सारे पहलू होते हैं, और आज हमने आपकी जिंदगी के इस पहलू पे बात की. आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल मीट, वी विल डिस्कस द वन मोर डायमेंशन ऑफ योर पर्सनालिटी.
1: जरूर.
0: इट वाज एन एब्सोल्यूट ऑनर, एंड आई वाज यू नो एक्साइटेड टू होस्ट यू. मजा बहुत आया.
1: माय प्रिविलेज.
0: थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्पेशल सेगमेंट, स्पेशल शो. और आज निसार आजम साहब हमारे साथ थे. टिल द टाइम वी मीट अगेन, लेट्स सेपरेट सम लव.

Jar Beats with Harshadeva, only on Radio Channel 90.4 FM.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
3: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: पड़ोसियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।
1: The game is on. Tune into Radio Chunar 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chunar 90.4 FM. 4 FM.

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society.

0: Let us say hi to life and bye to drugs.
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू.

ओके तुम आ रही हो, मैं जा रहा हूं। लगता रूम में रह गया।

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: कोक स्टूडियो भारत, सब्सक्राइब नाउ।
2: आदिनो हजरत मुख्तसर बात साहिबे मस्तन सुनो।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तस्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
1: दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 एफएम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जितेंद्र की नहीं।

रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जितेंद्र

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

चैन, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।
1: हाँ,

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: ओ गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर, क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार।
1: हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: लीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुक्तम में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है। वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है। वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी हम थे।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

फिर मैंने खींचा आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आ हा हा।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की मुश्किल।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।